0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
2: From the makers of Rocky और रानी की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents चांद मेरा दिल। Watch Ananya Pandey and Lakshya in चांद मेरा दिल, coming to cinemas on May 22nd.
3: चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल।
4: JBCO Films leke aaye action, emotion ate full on entertainment. Punjabi feature film Shera.
5: 5 saal baad mudiya Shera, te mudiya vi kede haath ta.
6: Starring Parmesh Verma, Sonal Chauhan, Yograj Singh, Manav Vij ate hor vi ugge kalakar.
7: Main utthon vi mud ke aaya jithon koi nahi mud ke aunda.
4: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
6: Hun vekhna na bhullo 15 mai to tuhade nedle cinema ghara vich
8: Shera. Hello, main hu Sunny Deol aur aap sun rahe hain 1674 AM।

0: पैसा।
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au। सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बोथ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
4: तू तो यार हुणे नहीं चाहिए, मैं तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन मसला दा मौका मिलदा रीलां तो बचन दा।
5: अरे बोलो पप्पू दे पापा,
6: इस 8 मई नु सिनेमा विच रिलीज होण जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

0: अरे जी क्या तू साला लक पाए हो यार।
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
6: सत श्री अकाल, इश बॉय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
2: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुन तमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
3: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: हेलो
1: हाँ जी 1674।
0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
3: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
4: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
5: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
6: Bale bale bale.
5: Bale bale bale.

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोडे नाल मोडा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ। 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
2: ਫੁੱਲ ਕਹਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ।

0: सिडनी वालों, तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ। 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au। सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
4: तू तो यार होना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहना एतवार भी स्कूल लगन मसला तो मौका मिलता है रीलां तो बचन दा।
5: अरे बोलो पप्पू दे पापा।
6: इस 8 मई नु सिनेमा विच रिलीज होने जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।
7: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
8: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
7: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
8: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
9: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
10: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
1: हुन थोड़े मोटे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
11: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
12: JBCO Films लेके आए में एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा,
13: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हालात च।
14: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
15: मैं उठो भी मुड़ के जिथों कोई नहीं मुड़ के होगा।
12: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni।
14: हुन वेखना ना भुल्यो 15 मई तो हाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा।

0: बढ़िया।
1: हाँ, एक दूजे तो पूछ लो तो ठीक है हाँ, ना सिंपल
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बाकी और कुछ नहीं है, बस यही हाल चाल ही एक बारी पूछ लो। और दिल हल्का करना बहुत जरूरी है। आप बड़ी सारी जगह थे बड़े बोलते हैं कि काउंसलिंग करा लो, ये कर लो, मिल लो, अपॉइंटमेंट्स ले लो, बट मैंने इदा लगता है जिथे एक तो खुद नाल बहना इज अ गुड एक्सरसाइज, पर यहाँ तुसी किस जिस नाल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो अपना दिल हल्का कर लेना चाहिए, वह भी थोनू बड़ा सुकून देता है। भावे मतलब वह डिपेंड करता किस वे ची स्ट्रेस रिलीफ करोगे, वो थोड़े टोटके थोड़े आप दे ट्राई टेस्ट मैथड। कई बार किसी एक बार होंगे कि मैं रीसैट करने कल बह के किताब पढ़नी है, किसी किसी का होंगे कि मैं कल ही ड्राइव तो निकल जाना, किसी किसी को पहाड़ी जगह से जाना पसंद है। वह डिपेंड है कि तुसी किस वे च रिलैक्स होना पसंद करते हो।
0: ये बड़ी वड्डी गल है जासी, तो ये आप एक नैक्सट स्टैप की गल कर रहे हैं जिहड़ी तुसी मतलब की आ वाला पायदान आ जिथे आप अपनी अद्धी समस्या हल कर चुके होवांगे। जो तुम गल की है कि तुम किताब पढ़ के तुम सुकून मिलता, यह मतलब कि तुम आइडेंटीफाई कर चुके हो तुम कि चीज़ सुकून मिलता। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जे तुम यह पता वा भी कि चीज़ करके मैं सुकून मिलता, यह मतलब कि तुम अद्धा पौना राह तय कर चुके हो। गल सिर्फ यह आ कि तुम हूँ वो टाइम नहीं कड़ पा रहे। तो कुछ एक चीज़ा जड़िया बहुत जरूरी ने अज दे इस दिन ज इस महीने मेरे वालों ये इनपुट ज सारियां नूं सलाह ज आपस दे विच एक दूसरे दे लई जिहड़ी आपां डिस्कशन करदे आं उहदे विच मेरी इनपुट यह रहेगी कि आपां पहलां हर एक दी जिंदगी दे विच अलग अलग तरह दीयां प्रॉब्लम ने वह तुहानूं बेहतर पता होगा तुहानूं कि चीज़ ज़्यादा परेशान करदी, किसे नूं पैसा ज़्यादा परेशान करदा, किसे नूं किसे दा विछोड़ा, किसे नूं किसे दा साथ, कुछ भी हो सकदा। पर जिहड़ियां कुछ एक बेसिक चीज़ां ने जिहड़ियां हर एक इंसान दे विच सेम ने आपां उहनां दे उत्ते गल करांगे। मेरी इनपुट यह होगी कि आपां पहलां आइडेंटिफाई करिए साडे लई सब तो जरूरी चीज़ां की ने। फॉर एग्जाम्पल सब तो जरूरी साडी सेहत है, सेहत नूं किदां आपां ठीक रख सकदे आं। आपां हर रोज़ दी अपनी रूटीन दे विच वॉक जे तुसीं कर सकदे हो ते रनिंग, जे तुसीं कर सकदे हो ते एक्सरसाइज, कुल मिला के इहनूं आपां कहीए ते डेली तुहाडे शरीर नूं पसीना लिआउण दे लई कुछ ना कुछ जरूर करो। नंबर वन भावें तुसीं तंदुरुस्त हो तां वी तुसीं वैसे ते वेखो किड्डी अजीब गल आ, जिहड़ा बंदा तंदुरुस्त नहीं होगा वह कदी जिम जाऊगा, वह बेचारा कित दौड़ सकता। माड़ी जी कितने सिर दर्द होंगी होना भी तो माइग्रेन तो ही भी शिकायत होंगी है, तो पैर थले रखिया इदा फील हों जिदा ना थौड़ा वजा हो सिर च, तो फिर आप कि कह सकते हैं भी हाँ भी पर साडे च उल्ट आ, जिन्ना चिर कोई ठीक होवे उन्ना चिर तक मूंह नहीं करता एक्सरसाइज नूं जो माड़ा मोटा जिहा ढिड निकल लगता है ना, जां कोई
1: डॉक्टर दा धक्का नहीं आता कि हुण तुसीं करना ही पैणा तुहानूं तां।
0: पर ये जरूरी आ कि आपां ये पॉइंट आपां नोट रखिए, सब तो जरूरी साडी सेहत, ते सेहत दे लई जरूरी मान लो डेली दी रूटीन दे विच तुहाडे एक्सरसाइज बहुत हल्के तो किसे भी तरह की चाहे वॉक ते जरूर रखो तुसीं, नंबर वन। नंबर टू तुसीं तुहाडा खाण पीण तुसीं इन्ना क जरूर सोचो कि जो तुसीं खा रहे हो कि तुसीं ठीक कर रहे हो, ठीक खा रहे हो तुहानूं आंसर तुहाडे तुहाडे अंदर नहीं तुहानूं दे देना वा, तुसीं जे गलत खा रहे हो तो तां वी सही खा रहे हो तो तां वी, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ां ने। जे नहीं खा रहे तो फिर कल नूं किसे नूं आपां दोष नहीं दे सकते। सो हर रोज़ जदों आपां कुछ खाने आ कुछ आपां पीने आ तो साडे अपने आप नूं एक सवाल जरूर साडा होना चाहीदा भी कि आ मैं ठीक कर रहा। हौली हौली वह चीज़ां रिड्यूस होंदियां जाणगियां। मान लो जे कोई शराब पींदा रोज़ अपने आप नूं सवाल करदा तो हौली हौली वह चाह दे टाइम भी सवाल करने शुरू कर दूगा है ना। सो जिदा जिदा उन्हें प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, बाकी फिर भी तुम करी जाओ वो एक अलग गल है, पर यह बेसिक चीज़ा ने तुहाडी एक्सरसाइज, तुहाडा खाना पीना, तो इस दे नाल ही तुहाडी सारी दी सारी ये दो चीज़ा ही आप ठीक कर लिए, तो उस तो बाद जे तुम तीसरा कर सकते हो जिहड़े भी तुम रब न मानते हो जिहड़े भी धर्म के विच हो भावें तुम 10 मिनट ही कढ़ो पर बह के कढ़ो। हुण कई लोगों की रूटीन ये कई इदा कह देंगे कि आप तो जाते जाते पाठ कर लें, हाँ वो भी वधिया वा, वो प्लस 10 मिनट बहन वाला भी कुछ करो जिहदे विच टिकाओ होवे, जिहदे विच तुसीं हाँ ठहराओ होवे, तुसीं जमीन दे उत्ते ये भी नहीं कि बैड दे उत्ते तुसीं बैठे हो, वह भी विच काउंट ना करोगे, उहदे पिछे बहुत सारे रीजन ने, बड़ी सारी साइंस है, आपां बहुती डिटेल च नहीं अज जावांगे। तुसीं जमीन दे उत्ते भुंजे तुसीं बहना वा, नंगे पैरी ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310 डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
2: और जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे
2: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच
3: जवाका दी एक्टिंग है कमाल पवेगा हुन धमाल नीरू बाजवा निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
5: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
5: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
6: पांडे जी क्या तू साला लक पाए हो यार एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना
7: देखिए प्रजापति पांडे उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में
1: हुन थोड़े मोटे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
8: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
9: JBCO Films लेके आए ने एक्शन इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा
10: 5 साल बाद मुड़िया शेरे ते मुड़िया भी केड़े हाथा चे
11: स्टारिंग परमीश वर्मा सोनल चौहान योगराज सिंह मानव विज अते होर भी उगे कलाकार
12: मैं उठो भी मुड़ के जिथों कोई नहीं मुड़ के होगा
9: Written and directed by Savio Sandhu. Produced by Anmol Sahni.
11: Hun vekhna na bhullyo 15 Mai to tuhade nedle cinema ghar vich.
9: Yeah.

0: अरे जी क्या तू साला लक पाए हो यार,
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: ਫੁੱਲ ਘਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
2: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshy in Chand Mera Dil coming to cinemas on May 22nd.
3: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
4: JBCO Films लेके आए ने एक्शन इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा
5: 5 साल बाद मुड़िया शेरे ते मुड़िया भी केड़े हालात च
6: स्टारिंग परमीश वर्मा सोनल चौहान योगराज सिंह मानव विज अते होर भी उगे कलाकार
7: मैं उठो भी मुड़ के जत्थों कोई नहीं मुड़ के होगा
4: Written and directed by Savio Sandhu produced by Anmol Sahni
6: हुन वेखना ना भुलियो 15 मई तो हाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310 डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au
2: जवाका दी एक्टिंग है कमाल पवेगा हुन तमाल
3: ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਵੀ ਜਵਾਨ

0: इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au। सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: चल दोस्तों, मैं हां थोड़ा अपना प्रीतरपाल ते तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी 1674 AM।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा निर्मल ऋषि जी की मूवी जवाक देखण जरूर आयो।
1: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चले आए, और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
6: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
7: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
8: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
2: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
9: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
10: और जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
10: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
10: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
11: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰ ਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
3: ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ, ਹੋਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ, ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ। सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
10: और जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
10: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
10: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टर्न विच वी तुहाडी सेवा विच।
12: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
13: स्कूल तो यार होना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन, मसला तो मौका मिलता रीलां तो बचन दा।
14: अरे बोलो पप्पू दे पापा।
15: इस 8 मई नू सिनेमा विच रिलीज होण जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।
3: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 सालों का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
0: हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
2: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
3: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
4: JBCO Films लेके आए ने एक्शन इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा
5: 5 साल बाद मुड़िया शेरे ते मुड़िया भी केड़े हाथ आज
6: स्टारिंग परमीश वर्मा सोनल चौहान योगराज सिंह मानव विज अते होर भी उगे कलाकार
7: मैं उत्थों भी मुड़ के जत्थों कोई नहीं मुड़ के होगा
4: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
6: हुन वेखना ना भुलियो 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा
8: Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
9: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
10: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
11: This station is now the ultimate power in the universe.
12: Radio Haji 1674.

ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au। हाँ जी हाँ।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: 11시 쏘나소 쥐하타레스
1: JBCO Films leke aaye action emotion ate full on entertainment Punjabi feature film Shera
2: 5 saal baad mudiya Shera te mudiya vi kede haath ta
3: starring Parmesh Verma Sonal Chauhan Yograj Singh Manav Vij ate hor vi ugge kalakar
4: main utthon vi mud ke jithon koi nahi mud ke honga
1: written and directed by Savio Sandhu produced by Anmol Sahni
3: hun vekhna na bhullyo 15 mai ton tuhade nedle cinema ghar vich Shera
5: पांडे जी क्या तू साला लक पाए हो यार एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चले गए और ये तीसरी दोस्त ही है ना
6: देखिए प्रजापति पांडे उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में
7: हाय दिस इज आयुष्मान खुराना एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो हांजी

0: अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
0: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच वी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
3: सत श्री अकाल जी, मैं तो अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
3: तू तो यार होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन, मसला तो मौका मिलता रीलां तो बचन दा।
4: अरे बोलो पप्पू दे पापा,
5: इस 8 मई नु सिनेमा विच रिलीज होने जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
2: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil coming to cinemas on May 22nd. Chand

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच वी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406 966 668 और विजिट shipglobal.au।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: Hanji Hanji, yoy Hanji Hanji,
3: Hanji Radio.
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
5: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: You are listening
3: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
3: Radio Haji
2: Stay tuned।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1674 AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी, मैं हूँ विक्का और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो, हाँ जी 1674 AM बेबी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रभ नाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एक है नाम चबत अगनत अनेक है
0: वेद पुराण सिमर सदाखर कीने राम नाम एक अखर
1: इनकै जे जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै
0: कांखी एक है दर्श तुहारो नानक कुण संग मोहे उधारू
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभ कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभ सिमरत काछ बिघन लागै प्रभ कै सिमरन आनंद न जागै
1: प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभ कै सिमरन सार कै संग सर्ब निधान नानक हरंग
1: प्रभ कै सिमरन सिद्ध नौ नित प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभ कै सिमरन होय सो भला प्रभ कै सिमरन सो फल फला
1: श्री सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभ कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभ कै सिमरन तिसना बुझै प्रभ कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभ कै सिमरन नाही जम तरसा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभ कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभ को सिमरै सी धनवंते प्रभ को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभ को सिमरै सी जन परवान प्रभ को सिमरै सी पुरख प्रधान
1: प्रभ को सिमरै सी बेमुहताजे प्रभ को सिमरै सी सर्व के राजे
0: प्रभ को सिमरै सी सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभ को सिमरै सी पर उपकारी प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी
1: प्रभ को सिमरै सी मुख सुहावै प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै
0: प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता
1: प्रभ को सिमरै तिन अंध घनेरे प्रभ को सिमरै बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते अंध न जाग नानक सिमरन पूरै भाग
1: प्रभ कै सिमरन कारज पूरै प्रभ कै सिमरन कबु न जूरै
0: प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभ कै सिमरन निचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभ कै सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार
1: सिमरै से जन जिन कुर पर मैया नानक तिन जन सरनी पैया
0: हर सिमरन कर भत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए
1: हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक श्लोक
0: दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: या मात पिता सुतमीत ना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय
0: जह महा भयान दूत जम दल तह केवल नाम संग तेरा चलै
1: जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नीता रह हर को नाम कूट पापर हरै
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे
0: सगल सृष्टि को राजा दुखिया हर का नाम जपत हि सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै
0: अनक माया रंग तिखना बुझावै हर का नाम जपत आगावै
1: जे मार्ग हो जात कीला तै हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नामन सदा ध्याइए नानक गुरमुख परमगत पाइए
1: छूटत नाही को लख बाही नाम जपै तै पार पराही
0: अनक बगंजह आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै
1: अनक जून जन्म मर जाम नाम जोत पावै विश्राम
0: हो मैला मल कब हो ना धोवै हर का नाम कूट पाप खोवै
1: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइए साधकै संग
0: जे मार के गन जाहे न पूसा हर का नाम उहा संग तोसा
1: जै पेंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंथ तेरा को न सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू
1: जा महा बयान तो प्रोगाम ते हर के नाम की तू ऊपर छाम
0: जहां तिरखा मन तुझ आ करखै तह नानक हर हर अमृत बरखै
1: भगत जना की बरतन नाम संजना कै मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उधरे जन कोट
1: हर जस करत सन दिन रात हर हर औखत साध कुमार
0: हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान
1: मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन कै बिरद विवेकै
0: हर का नाम जन को मुक्त जोत हर कै नाम जन को तृप्त भोगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग
0: हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोजो हर नाम जपत कछना है बिजो
0: जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा
1: हर हर जन के माल खजीना हर धन जन को आप प्रभ दीना
0: हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत पोत जन हर सराते सुन समाद नाम रसमाते
0: आठ पहर जन हर हर जपै हर का भत प्रगटनी छपै
1: हर की भगत मत पौ करै नानक जन संकेते तरै
0: पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा
0: नाम की महिमा संत रिदवस है संत प्रताप दुर सब नसै
1: संत का संग उड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम दे आई है
0: नाम तुलका छबर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए
1: सुखमनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दो श्लोक
0: बहुत शास्त्र बहुत सिमरती पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: आप ताव ज्ञान सब ध्यान खर शास्त्र सिमरत वख्यान
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मध्य फिरे ਕਿਰਿਆ
1: ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁ ਰਤਨਾ
0: ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ
1: ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ
0: ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੈ
1: ਅਗਨ ਮਾਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕਨਕ ਅਸ ਹੈ ਵੁਰਨਾਮ
0: ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਯਮਤ ਸਾਧਨ
1: ਨਿਮਕ ਨਿਮ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤੋ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ
0: ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ
1: ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ
0: ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਾ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ
1: ਦੇਹੀ ਕੋ ਬੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਟਰੈ
0: ਜਲ ਤੋ ਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀ
1: ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ
0: ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜੋ ਕਾ ਭਾਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰਾਪੈ
1: ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੰਨੀ ਬੂਝੈ ਕੋਟ ਪਾਵ ਦਰਗੈ ਨੀ ਸਿਜੈ
0: ਛੂਟ ਸੁਨਾਹੀ ਊਬ ਪਾਇਆਲ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ
1: ਅਵਰ ਕਰਤੂ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿੰਨੀ ਮਨ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ
1: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ
0: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾ ਲੋਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਮੈਂ ਛੋਰੇ
0: ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਰੈ
1: ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋ ਪਵ ਦਸ ਪਿਆ ਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾ ਸਾ
0: ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕੈ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨੀਚਾ ਸੋ ਉਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ
0: ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ
1: ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਟਾਨਾ ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ
0: ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪੋ ਨਿਹਲੇ ਪਾ
1: ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਓ ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਥਾਓ
0: ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇ ਬਹੁਦਾਨ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
0: ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਨ ਹੋ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ
1: ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਏ
0: ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ
1: ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ
0: ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਾਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ
1: ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਨੂੰ ਰਸਮ ਬਖਾਣੀ
0: ਸਗਲ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਥਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਘਟ ਬਸੈ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵ ਨਾਮ ਭਗਜਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ
0: ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਹ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕੀ ਆਤਿਸ਼ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਰਾਮਈਆ ਕੀ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦਸ਼ਟਾਨੀ
0: ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨੈ ਉਬਾਰਿਆ
1: ਬਾਰ ਬਸਤਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ
0: ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ
1: ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕੁਛੂ ਨਾ ਬੁਝੈ ਬਖਸ਼ ਦੇਹੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ
0: ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸਹਿ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਘਰਸ ਹੈ
1: ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁਲਾ
0: ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਸਾ
1: ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗਰਚਨਾ
0: ਐਸੇ ਦੁਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ
1: ਆਦਿ ਅੰਨ ਜੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ
0: ਜਾਕੀ ਸੇਵਾ ਨਮ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋ ਮੂੜਾ ਮਨ ਹਿਲਾਵੈ
1: ਜੋ ਠਾਕਰ ਸਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਨ ਦੂਰੇ
0: ਜਾਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗੈ ਮਾਨ ਤਿਸਹਿ ਬਸਾਰੈ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ
0: ਰਤਨ ਤਿਆ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ
1: ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਤਰ ਕਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨ ਹੈ
0: ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਾਰੈ
1: ਚੰਦਨ ਲਈ ਪੁਧਾਰੈ ਧੋਏ ਗਰ ਤੀਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ
0: ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਵਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ
1: ਦੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ
0: ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਛਪ ਸਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ
1: ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋ ਸਵਾਨ
0: ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਹਾ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ
1: ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾ
0: ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗਹਿ ਲੇਹੋ ਉੜਨ ਵਿਹਾਵੈ
1: ਕਹਾ ਬੁਜਾਤ ਬੁਜੈ ਡੋਰਾ ਨਿਸਕੀਏ ਤੋ ਸਮਝੇ ਭੋਰਾ
0: ਕਹਾ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤੋ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ
1: ਕਹਾ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਕੂਹਾ ਉਸ ਗਵਨ
0: ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ
1: ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਸੋ ਆਵੈ ਨਾ ਚੀਤ ਜੋ ਬਹਿ ਰਾਈ ਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ
0: ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਸੈ ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ
1: ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੈ ਚੀਤ
0: ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ
1: ਇਹੋ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ
0: ਠਾਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ
1: ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂ ਗਨੇਰੇ
0: ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾਂਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ
1: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵ ਨਾਮ ਭਗਜਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਚਾਰ ਸਲੋਕ
0: ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕਹਿ ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਸੀ ਜਈ ਬਿਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ ਇੱਕ ਬਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੋਟ ਗਵਾਵੈ
0: ਏਕ ਭੀਨਾ ਦੇ ਦਸ ਭੀਹਰ ਲੈ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾਂ ਕਰੇ
1: ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ
0: ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ
1: ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ पाया
0: अगणत साहो अपनी दे रास खात पीत बरत आनंद उलास
1: अपनी अमान कछ बहुर साले अज्ञानी मन रोस करे
0: अपनी प्रति तापी खूवे बहुर उसका विश्वास न होवे
1: जिसकी बस्ती सागे राख है पप की आज्ञा माने माथे
0: उसते चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल
1: अनक पात माया के हे सर पर होत जान अनेक
0: बिर की छाया सो रंग लावे ओ बिन सह ओ मन पछतावे
1: जो दिसै सो चालन हार लपट होते अंध अंधार
0: बटाऊ स्यों जो लावे नेह ताको हाथ ना आवे के हे
1: मन हर के नाम की पीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई
0: मिथ्या तन तन कुटम सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया
1: मिथ्या राजु मंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता
1: मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आप ऊपर करत गुमान
0: अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण
1: मिथ्या शरण पर निंदा सुने मिथ्या हस पर दरुक हिरे
0: मिथ्या नेत्र पेखत पर तिर रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुसवाद
1: मिथ्या चिन पर विकार कुतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
0: मिथ्या तन ही पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा
1: बिन मुझे मिथ्या सब पै सफल दे नानक हर हर नाम ले
0: बिरथी साख्त की आर जा साच बिना कह होवत सूचा
1: बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध
0: बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए
1: गोविंद भजन बिन बिथे सब काम जो कर प्रते निदार दाम
0: धन धन ते जन जिह घट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ
1: रहत वर कछ अवर कमावत मानी पीत मुखो गंडलावत
0: जन नहार प्रभु प्रवीण बाहर भेख न काहू पीन
1: और उपदेश है अपना करै आवत जावत जन मैं मरै
0: जिसकै अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार
1: जो तुम भाने तिन प्रब जाता नानक उंजन चन प्राता
0: करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आपह मानै
1: आपे आप आप करत नवेरा किसै दूर जिनावत किसै बुझावत नेरा
0: उपाव स्यान सगल ते रहत सब कछ जानै आत्म की रहत
1: पावै तिसलै लड़ लाए थान थनंतर रहा समाए
0: सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी
1: सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम भग जना कै मन विश्राम अठ पंज सलोक
0: काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: जय प्रसाद क्षति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे
0: जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परमत पावे
1: जय प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याज सदा मन अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमर हो तिस रसना
1: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग
0: जय प्रसाद पाठ पटम्बर हंडावे तिसे त्याका तवर लुभावे
1: जय प्रसाद सुसे सुई जय मन आठ पहता का जस गवी जय
0: जय प्रसाद तुर सब को मान मुखता को जस रसन बखाने
1: जय प्रसाद ते रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जपत दर गय मान पावे नानक पत सेती घर जावे
1: जय प्रसाद और कंचन देही लिवलाओ तिस नाम स्नेही
0: जय प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत
1: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाक मन सनी प्रभ ठाकर प्रभ ताक
0: जय प्रसाद तुझ को न पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चे
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे
0: जय प्रसाद आभूखन पहरी जय मन तिन सिमरत क्यों आलस की जय
1: जय प्रसाद असु हस्त असवारी मन तिस पर को कबू न बिसारी
0: जय प्रसाद बाग मिलख तना राख पुरोहित प्रभु अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत सहते आई
0: सहते आजो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है
1: जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
0: जय प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभु को सास सास चितारी
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात
1: जय प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कह
0: जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद पेख है बिस्मार
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सो सहजे बसना
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है
1: जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सो सह समावे
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो
1: जय प्रसाद तू पर संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप
1: जय प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूर है
0: जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराच
1: जय प्रसाद सब की अत होए नानक जाप जपे जप सोए
0: आप जपाए जपै सो नाओ आप गावे सो हर गुण गाओ
1: प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास
0: सब सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए
1: सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु ना किन्हु लया
0: जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक किन कै कछु न हाथ
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ छे श्लोक
0: आगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचार्य कथा सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: साध कसंग मखूजल होत साध संग मल सगली को
0: साध कसंग मिटै अभिमान साध कसंग प्रगटै सो ज्ञान
1: साध कसंग पूजे पवनेरा साध संग सुबहुत नबेरा
0: साध कसंग पाए नाम रतन साध कसंगे कुपर जतन
1: साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी
0: साध कसंग अगोचर मिले साध कसंग सदा प्रफुल
1: साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा
0: साध संग हो सब की रेन साधक संग मनोहर बैन
1: साधक संग न कतहु धावे साध संग अस्तित्व मन पावे
0: साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनी
0: साध संग किसे नहीं बैर साधक संग न बिंगा पैर
1: साधक संग नहीं को मंदा सत्संग जाने परमानंदा
0: साधक संग नहीं हो ताप साधक संग तजे सा बाप
1: आपे जाने साध वडाई नानक साध प्रभु बनियाई
0: साधक संग न भूतावे साधक संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस अगोचर लह साधु के संग अजर सह
0: साधक संग बसै थानूचै साधु के संग महल पहुंचै
1: साधक संग दिड़े सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म
0: साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान
1: साधक संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीट कुटुंब निस्तारे
0: साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सुबह सुर देवा
0: साधु कै संग पाप पलायन साध संग मृत गुण गायन
1: साधक संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम
0: साध के संग नहीं कछ काल दर्शन पीड़त होत निहाल
1: साध के संग कुलूकत हरै साध के संग नर पर हरै
0: साध के संग इहां उहां सुहिला साध संग बिछड़त हर मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक उदरै साध सुन रसै
1: साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तारै
1: साध के संग लगे प्रभु मीठा साधु कै संग गड़गड़ डीठा
0: साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी
1: साध के संग मेटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग
0: साध की महिमा भेद ना जाने जीता सुने तेता बखियाने
1: साध की उपमा तेह गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर
0: साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा उई ते उची साध की शोभा मूझ ते मूची
0: साध की शोभा साध बनाई नानक साध प्रा भेद न पाई
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कह मन विश्राम अठ सत श्लोक
0: मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे एक बिन कोए नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: दम ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख
1: दम ज्ञानी कह दिस समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
0: ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जेक जो बसदा को खोदै को चंदन ले
1: दम ज्ञानी का है गुनाव नानक जो पावक का सही स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तार ऊपर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही बिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा मन अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रवाप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दिस अमृत बरसी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी कह होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग
0: ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सर जागत ब्रह्म ज्ञानी अह बुद्ध त्याग
0: ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कविता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन मा
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अधाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखानै ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानै
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीवै नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुकुट जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
0: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बानी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ अठ श्लोक
0: पुर धारै जो अंतर नाम सर्व मैं पेखै भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक हो अपरस सगल निस्तार सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस मन मैं पीत निरंजन दर्श
0: पर तेरे रूप न पेखै नेत्र साध की टहल संत संग हेत
1: न सुने काहु की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद बिख्या पर हर है मन की बासना मन ते टर है
1: इंद्री जित पाई दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस
0: वैष्णो सोजे सुपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म करत हुए ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: काहू फल की इच्छा नहीं बाछै केवल भात कीर्तन संग राचै
1: मंत्र अनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ अवरह नाम जपावै नानक हो वैष्णो परमगत पावै
1: भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग
0: मंते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म
1: सासंग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै
0: भगवंत की टहल करै नितनीत मंता नरपै विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै
0: सो पंडित जो मन पर बुद्ध है राम नाम आत्म में सुध है
1: राम नाम सारस पीवै उस पंडित के उपदेश जग जीवै
0: हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै
1: वेद पुराण सिमरत बुझै मूल सुख मैं जाने स्थूल
0: चौं वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौं वरना मैं जपे को नाम
0: जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोए
1: कर कृपा अंतर उधारे पशु प्रेत मुक्त पाथर को तारे
0: सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: आहो जुगत किते ना पाईए धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास
1: आत्म नाम तिस नदरी आया दास संतर भाए तिन पाया
0: सदा नित नित हर जान सो दास दरगै प्रवान
1: अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर
0: सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास
1: की आ गया तुम हितावै जीवन मुक्त सो कहावै
0: ऐसा हरक तैसा सोग सदा अनंत है नहीं बियोग
1: ऐसा सुन तैसी उस माटी तैसा अमृत तसी बिखाटी
0: ऐसा मन तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान
1: जो वर्ताए साई जुगत नानक ओ परख कहिया जीवन मुक्त
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित का राख है तैसा तिनाओ
1: आपे कन करावन जोग प्रभावै सुई फन होग
0: असरे आप हुए अंत रंग लखिन जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दी तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अवनाश
0: सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ नौ श्लोक
0: उस्तत करे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहु विद अनक प्रकार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी
0: कई कोट भय तीर्थ वासी कई कोट मन पर महदासी
1: कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है
1: कई कोट नवत नाम ते आवै नानक करते का अंत न पावै
0: कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी
1: कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर
0: कई कोट पर दर्ब को हिर है कई कोट पर दुख ना कर है
1: कई कोट माया सुरमा है कई कोट परदेश भरमा है
0: जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट से जती जोगी कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्पो पाए कई कोट पाथर बिरखन पजाए
1: कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल
0: कई कोट ससिर सूर नखत्र कई कोट देव दानविंदर सिर छत्र
1: सुमदरी अपने सुतार है नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार है
0: कई कोट राजस्ताम सातक कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र
1: कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चिरजीव कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थी
1: कई कोट जा किन प्रसाच कई कोट भूत पे सुकर मिर्गा
0: सब ते नेरा सब होते दूर नारक आप लिप्त रहा भरपूर
1: कई कोट पाताल के वासी कई कोट नर्क सुर्ग निवासी
0: कई कोट जन मैं जीव मर है कई कोट बहु जूनी फिर है
1: कई कोट बैठती खाए कई कोट खा ले तक पाए
0: कई कोट किए धनवंत कई कोट ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ
1: ਜਹ ਜੈ ਬਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਾਥੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜਨ ਤੇ ਆ ਤੁਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹਮ ਤੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਿ ਆਸ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾਸ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮਾ ਗੈ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ
0: ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੋਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ
1: ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰੋ ਪਾਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਕ ਏਕ ਅੰਕਾਰ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ
1: ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੇ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ
0: ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਦਸ ਸਲੋਕ
0: ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ
0: ਕਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪ ਨਹਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ
1: ਹੁਕਮੈ ਧਾਰ ਅਤਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੈ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ
0: ਹੁਕਮੈ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੈ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ
1: ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ
0: ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਮਨ ਗਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ
1: ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਪਾਖੈ
0: ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਥ ਤੋ ਧਾਰੈ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ
1: ਦੁਹਸਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਆਮੀ ਖਿਲੈ ਵਿਖਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
0: ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ
1: ਕਉ ਮਾਨਕ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ
0: ਇਸ ਕੈ ਹੱਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ
1: ਅਨਜਾਨਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ
0: ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾਵੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰਾਵੈ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ
0: ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ
1: ਜਾ ਕਾ ਦਿਸ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਦਸ ਪਲਟਾਵੈ
0: ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼
1: ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਘੜ ਘੜ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਨਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬਡਾਈ
1: ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਈ ਇਸ ਹਾਥ ਕਰਮ ਕਰਮ ਸਰਵ ਕੋ ਨਾਥ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਥੀਓ
1: ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕਬੂ ਸੋਕ ਹਰ ਖਰੰਗ ਹਸੈ
0: ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬਹੂ ਉਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ
1: ਕਬੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ
0: ਕਬਹੂ ਨਿਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਕਬਹੂ ਮਹਾਂਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕਿਹੋ ਤਰਵਾਲ
0: ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ ਕਬਹੂ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ
1: ਕਬਹੂ ਅਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ
0: ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵੀ ਰਹਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹਿ
1: ਕਬੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ ਕਬੂ ਮੋਹਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ
0: ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਬਹੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ
1: ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਨਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ
0: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ
1: ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ
0: ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੋ ਪਾਵੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ
1: ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼
0: ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਰ ਤੇ ਇਕ ਰੰਗ ਸਦਾ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਜੋਤ ਸਮਾਨਾ
0: ਮਿਟ ਗਏ ਗਮਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਗਿਆਰਾਂ ਸਲੋਕ
0: ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰ ਪਾਤੀ ਹੋ ਸਵਾਨ
0: ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੇ ਬੋ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ
0: ਧਨ ਭੂਮਗਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤ ਆ ਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
0: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗੁਰਬਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ
1: ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨਕ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਪੀਤਰਤਾ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ
0: ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ
1: ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੇ ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ
0: ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਕਾ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ ਸੋ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਦਰ ਗੈ ਪਰਵਾਨ
1: ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋ ਤਾਰੈ ਸਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੈ
0: ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ
1: ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰਾ ਤੁਮ ਨੀਂਦਰਵੈ ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਕੋ ਕੈਸੈ ਗਵੈ
0: ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ
1: ਸਰਬ ਕਿਰਿਅਨ ਜਾਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ
0: ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ
1: ਜਾਵੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰ
0: ਜਬ ਤਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀ ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ
1: ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੁਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਲੈ ਦੇ ਸਜਾਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਛੂਟੈ
1: ਸੈਸ ਕਟੇਲਾ ਕੋਟ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ
0: ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ
1: ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਤ ਬਿਤੈ ਸਭ ਕਾਜੈ
0: ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾ
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵ पावन कर नै हार इसका हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए
0: जो किछ कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हु कै संग
1: पूजै देखै करै विवेक आपे एक आपे अनेक
0: मरण बिन सै आवै न जाए नानक सद ही रहया समाए
1: आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ
0: आप कीनो आपन विस्तार सब का छुसका ओहो कर नै हार
1: उस्ते बिन कहो किछ होए थान तनंतर एकै सोए
0: अपने चले तब कर नै हार कौतुक करै रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए
0: सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने विख्यानी
1: सच सच सच सब की ना कोड मदे किने विरले चीना
0: भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर पार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी स्वर्ण बखानी
0: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ बारह श्लोक
0: संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपति
1: संत के दुख नार जा कटै संत के दुखन जमते नहीं छुटै
0: संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सुबाते ही
0: संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक बीतर
0: संत के दुखन ते मुख पावै संतन के दुखन कागजों लवै
1: संतन कै दुखन सर्व जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
0: संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संत के दुखन सब को छलै
1: संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच नीचाए
0: संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावे ता ओए पीगत पाहे
1: संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिंटिक न पाई
0: संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखी आर दीन
0: संत के निंदको सर्व रोग संत के निंदको सदा बिजोग
1: संत की निंदा दुख में दुख नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
0: संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का निमित
1: संत के दुखी को डान लागे संत को दुखी को सब त्याग
0: संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बिकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे संत के दुख ना सुख ते टरे
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीते टूटे संत का दुखी किते काज ना पहुंचे
0: संत के दुखी को ध्यान परमाइया संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास में ना मृत की लोथा
0: संत के दुखी की जड़ किछ नाहे आपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर ना रखन हार नानक संत भावे ता लय उबार
0: संत का दुखी ओ बिल लाए जो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा जो पावक इधर नहीं त्रापे
0: संत का दुखी छुटाए केला जो बुआर तिल खेत माहे दहेला
1: संत का दुखी तरम ते रहत संत का दुखी सदमिथ्या कहत
0: किरत निंद का तुर ही पया नानक जो तिस पावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिग रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिला सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाइय संत का दुखी मां नाम रहना जीवाइय
1: संत के दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उचले निराशा
0: संत के दुख न तृष्णा कोए जैसा पावे तैसा कोई होए
1: पया कितन मेट कोए नानक जाने सच्चा सोए
0: सब कर तिसके ओहो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार
1: सब की उस्तत करो दिन रात तिसे त्याव सास की रास
0: सब कछ वरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेल अब करने हार दूसर कौन कहे विचार
0: जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ तेरह श्लोक
0: तजो सियानप सुरजन हो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पौ जाए सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपति
1: मान की टेक विधि सब जानो देवन को एक है भगवान
0: जिस कह दिया रह अगाए बहुर न तृष्णा लागे आए
1: मारे राखे एक आप मान कै कुछ नाही हा
0: तिसका हुक्म बूढ़ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर पव सोए नानक बिघन न लागे कोए
0: उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो
0: नैनो पे ठाकुर कारंग साध संग बिन सह सब संग
1: चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद
0: हर हर कर्म सर्वन हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा
1: वडबागी ते जन जग माहे सदा सदा हर की गुण गाहे
0: राम नाम जो कर है बीचार से धनवंत गनी संसार
1: मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी
0: एको एक एक पछाने इतुत की हो सूझी जाने
1: नाम संग जिसका मन माने आ नानक तिन निरंजन जाने
0: गुर प्रसाद अपन आप सूझे तिसकी जानो तृष्णा बुझे
1: सात संग हर हर जस कह तू सर्व रोग त्यो हर जन है तू
0: आंदर कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जम की फासा
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लागे दुख
1: जिसको हर पर मंचित आवे सो सन सुहेला नहीं डुलावे
0: जिस पर अपना कृपा कर सो सेव कहो किसते डर है
1: जैसा सत तैसा दिष्ट आया अपने कार्य में आप समाया
0: सोदत सोदत सोदत सीजा गुर प्रसाद तत सा बूझिया
1: जब देखो ता सब किछ मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल
0: नह किछ जन्म नह किछ मर अपन चलित आप ही कर
1: आवन जावन दिष्ट अनदिष्ट आज्ञाकारी तारी तारी सब सिस्टर
0: आपे आप सगल मह आप अनक जुगत राज थापो थाप
1: अविनाशी नाही किछ खंड तारन धार रहो ब्रह्मांड
0: अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप
1: जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरे तनमंत
0: प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारन
1: आपे मेल लय कृपाल गुर का सजो पै निहाल
0: उनकी सेवा सोई लागै जिसनो कृपा करह बड़ भागै
1: नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान
0: जो किछ करै सो प्रभु कै रंग सदा सदा सह हर संग
1: सह सुबह होवे सो होए करने हार पछाण सोए
0: प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सत ऐसा दृष्टाना
1: जिसते उपजे तिस महे सुमाए ओए निधान ओए सुख निदान उन्हों बनाए
0: आपस को आप दीनो मान नानक प्रभु जन एको जान
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ चौदह श्लोक
0: सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जा कै स्मरण उदरिए नानक तिस बलिहार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: टूटी गणन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल
0: सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे
1: रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभा पे
0: आपन की आ कछु न होए जिसो प्राणी लोचै कोए
1: तिस बिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम
0: रूपवंत होए नाही मोह है प्रभु की जोत सगल घट सो है
1: तनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब की तिसका दिया दरब है
0: अत सूरा जे को कहावै प्रभु की कला बिना कहतावै
1: जे को होए बह दातार तिस दिन हार जाने गवार
0: जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग नानक सोजन सदा अरोग
1: ज्यो मंदिर को था मैं थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन
0: ज्यो पाखान नाव चढ़ता रह प्राणी गुर चरण लागत निस्ता रह
1: ज्यो अंत का दीप प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास
0: ज्यो महाद्यान मह मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे
1: इन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर
0: मन मूर्ख काहे बिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए
1: दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्या तू तसै चितार
0: जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे अजान
1: कौन बस ताई तेरा संग लपट रहो रस डूबी पतंग
0: राम नाम जा फिर दे माहे नानक पद सेती कर जाहे
1: जिस वकर को लेन तू आया राम नाम संतन घर पाया
0: ताजब मान लेहो मन मूल राम नाम हृदय महतूल
1: लाद खेप संतै संचाल अवर त्या विख्या जंजाल
0: धन धन कह सब कोए मुख उजल हर दर गै सोए
1: हो वापार बिरला वापार है नानकता कै सद बलिहार है
0: चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध को अपना जियो

0: जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे
1: सब तिस का करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग
0: जप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मल एहे करनी
1: हर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया
0: जाके मन गुर की प्रति तिस जन आवे हर प्रवचीत
1: भगत भगत सुनिए तिह लोए जाके हृदय को होए
0: सच करनी सच ताकि रहत सच हृदय सत मुख कहत
1: साची दिस साचा आकार सच वर्ते साचा पासार
0: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता
1: सुख मनी सुख अमृत तब नाम पग जना कै मन विश्राम अठ पंद्रह श्लोक
0: रूप न रेख न रंग किछ त्रह गुण ते प्रापिन तिसह बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: अविनाशी परम मन में राख मन की तू प्रीत त्याग
0: तिसते परै नाहीं किछ कोए सर्व निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गही सुजाना
0: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद
1: सातरे की चरणी पाओ नानक कै मन इहो अनुराग
0: मनसा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सोई होग
1: हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर
0: आनंद रूप मंगल सत जाकै सर्ब थोक सुनिए कर ताकै
1: राज मैं राज जोग मैं जोगी तब मैं तभी सरगस्त मैं भोगी
0: त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किनै अंत न पाया
1: जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे वगाहे
0: पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम ते आवै से
0: गुण मैं जाको परमाए जन्म रह फिर आवे जाए
1: ऊंच नीच जिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान
0: नाना रूप नाना जाके रंग नाना पीख करे करंग
1: नाना बिकिनो विस्तार प्रभ बनासी एकंकार
0: नाना चलित करे खिन माहे पूरहे ओ पूर्ण सब ठाए
1: नाना बित कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई
0: सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नानक हर नाओ
1: नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड
0: नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम तारे सुनन ज्ञान ध्यान
1: नाम के धारे आगास पताल नाम के धारे सगल आकार
0: नाम के तारे पुरिया सा पवन नाम कै संग उदरे सुन सर्वन
1: कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समय समाणी
0: सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत
1: सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए तिसे सब भली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर पाई
1: सत बचन साधु उपदेश सत जंजा के दे प्रवेश
0: सत निरत बूझे जे कोए नाम जपत ताकि गत होए
1: आप सत की आसव सत आपे जाने अपनी मित गत
0: जिसकी सृष्ट सो कर नहार अबर न बूझ करत विचार
1: करते की मीना जाने किया नानक जो तिस पावे सो वर्तिया
0: जिस मन बिसम पय बिस्माद जिन बूझे तिस आया स्वाद
1: प्रभु कै रंग राज जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे
0: कोए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरै संसार
1: जन का सेवक सो वडभागी जन कै संग एक गुलागी
0: गुण गोविंद कीर्तन जान गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम पग जना कै मन विश्राम अठ सोलां श्लोक
0: आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हो सी पे सच सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार
0: दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत आवनहार
1: आप सत सत सवतारी आपे गुणकारी
0: शब्द सत सत प्रभ वक्ता सुरत सत सत जा सुनता
1: भूजन हार को ससब होए नानक सत सत प्रभ सोए
0: सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करन करावन तिन मूल पछानिया
1: जाके हृदय विश्वास प्रभाया तत ज्ञान तिस्मन प्रगटाया
0: पैते निर्भउ होए बसाना जिसते उपजा तिस माहे समाना
1: बस्त मैं ले बस्त गडाई ताको भिन्न न कहना जाई
0: बूझै बूझन हार विवेक नारायण मिले नानके
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग
0: सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभु तारै नानक सो सेवक सास सास सुमारै
0: अपने जन का पर्दा ढाकै अपने सेवक की सर पर राखै
1: अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आपत राखै ताकि गत मित कोई न लाखै
1: प्रभु कै सेवक को न पहुंचै प्रभु कै सेवक ऊचते ऊचै
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मैं कर राखै पसम करे लश्कर कोट लाखै
0: जिसका सास न काटते आप ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बो पात तिसके करत बिरथे जात
0: मारे न राखै अबर न कोए सर्व जिया का राखा सोए
1: काहे सोच करे रे पानी जप नानक प्रभ अख बडाणी
0: बारम बार बार प्रभ जपिया पी अमृत एहो मन तंत्र पिया
1: नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसकिच अबर नाही दिसताया
0: नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम कसंग
1: नाम रस जो जंत ताने मन तन ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਨ।

0: थी नीचे थी आके पक्का भी हो गया। की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करते हुए जब खुद को एक नए अंदाज से देखा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सामने आई, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देखा तो सबसे पहले अपने प्रति थी। और साथ ही हम बात कर चुके हैं रिलेशनशिप्स की। अब आगे बढ़ते हैं और रोल्स के बारे में जानते हैं कि कितने तरह के रोल्स हम हर रोज निभा रहे होते हैं और कैसे उनको मैनेज करना है। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिलेशनशिप्स भी समझ में आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब समझ में आई, और सेल्फ के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है, खुद के प्रति जो जिम्मेवारी है वो। अब रोल की बारी आती है, तो क्या मैं अपने रोल्स को देखूंगा, किस तरह से मैं रोल्स को आगे मैनेज कर सकता हूँ।
1: सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स कि एक अवेयरनेस के साथ अब जीवन जीना शुरू करें कि ये हर दिन जो बीत रहा है, हर दिन में जो हर पल बीत रहा है, इट इज लाइक अ सीन ऑफ द ड्रामा। एक सीन, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन, सीन्स आफ्टर सीन्स आफ्टर सीन्स इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑल द टाइम पुट टुगेदर इन द होल डे। एंड हर सीन में व्हाट एम आई डूइंग? आई एम जस्ट प्लेइंग अ रोल, बिकॉज हमें समझ में आ गया कि आई एम द एक्टर एंड दिस इज माई रोल। लेकिन एम आई कॉन्शियस वाइल प्लेइंग द रोल?
0: आई थिंक नेवर। और यहां से मुझे एक और बात समझ में आ रही कि जैसे ही मेरी सिचुएशन चेंज होती है मेरा रोल भी तो चेंज हो जाता है। कितनी बार, मतलब मैं पहले अगर हस्बैंड था, उसके बाद जब मैं फादर बना, सडनली देयर इज अ मेजर रोल चेंज, यू नो। और अगर मैं पहले बैचलर था और फिर मेरी शादी हुई तो मेरे और कितने सबके साथ रिश्ते जो है वो चेंज, उसकी कॉन्शियसनेस तो कभी भी नहीं रही।
1: So one is all these roles that I play, लेकिन ये जो आपने नाम भी लिए कि मैं husband था, मैं father हूँ, मैं कल को grandfather भी बनूंगा, all these roles that I play, इसमें भी I play roles. You see, role means कि हर scene जो आई उस scene में मैंने कैसे enact किया. That is my role in that particular scene. अब एक है अगर बिना सेल्फ अवेयरनेस के चल रहे हैं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि आई एम द एक्टर, तो हर सीन जो आती जाती है एंड एवरी रोल दैट आई प्ले, आई एम नॉट अवेयर कि मैं अपना रोल क्रिएट कर रहा हूं। आई फील कि मेरा रोल ये क्रिएट हो रहा है आपकी वजह से, सिचुएशन की वजह से। क्यों? इट कम्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ आर सीरीज कि जब हम कह रहे थे कि माई रिस्पॉन्सेस आर बेस्ड ऑन द सिचुएशन, या मेरा जो रिस्पॉन्स है वो परिस्थिति या लोगों पर बेस्ड है, इसका मतलब मैं जो अभी इनैक्ट कर रही हूँ वो किस पर बेस्ड है,
0: क्योंकि जैसे सिचुएशन आती गई मैं उस पर।
1: सो इट वॉज एज इफ सिचुएशन एंड लोग आर रिस्पॉन्सिबल, जिसके कारण आई एम प्लेइंग दिस रोल लाइक दिस।
0: ओके, दे आर इंस्टिगेटिंग मी टू बिहेव लाइक दिस और एक्ट लाइक दिस,
1: राइट? तो फिर हम समझते थे कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है, जिसके लिए हम ये कहते थे कि डेस्टिनी ऑलरेडी फिक्स्ड है, भाग्य मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं तो सिर्फ उसको प्ले कर रहा हूँ। नाउ इसमें फिर कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है और ये तो मैं सिर्फ करता जा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
0: दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी एज अ ग्रैंडफादर, एज अ फादर, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी
1: एंड दिस इज फिक्स्ड एंड आई एम प्लेइंग इट लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। आई एम इनएक्टिंग दिस पर्टिकुलर सीन लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। जो भी मेरा अभी रिस्पॉन्स है, जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा बात करने का तरीका है, इट इज बिकॉज ऑफ यू। तो इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं थी कि अपने रोल को कैसे प्ले करना है, क्योंकि हमने सोचा डायरेक्टर कोई और है, क्रिएटर कोई और है, मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूं और मैं वो जो किसी ने फिक्स किया हुआ मेरा रोल मैं उसको प्ले कर रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे हमें ये अवेयरनेस आती गई कि एवरी रिस्पॉन्स स्टार्ट्स विद माय थॉट, सिचुएशन आई मैंने थॉट क्रिएट किया, तो जब ये फर्स्ट फंडामेंटल रिस्पॉन्स समझ में आया कि मेरी थॉट मेरी चॉइस है, इसका मतलब मेरा रोल मुझे कैसे प्ले करना है वो
0: मेरी अपनी चॉइस है,
1: मेरी चॉइस है। सो बेसिकली सेम लाइफ, सेम रिलेशनशिप, सेम सो कॉल्ड रोल्स, बट नाउ आई विल क्रिएट द रोल
0: द वे आई वांट
1: टू डू इट।
0: बट वी ऑलवेज से द डायरेक्टर इज वन,
1: हु इज द डायरेक्टर?
0: ही इज डायरेक्टिंग, यू नो।
1: नाउ अगेन वी अंडरस्टूड व्हाट्स गॉड्स रोल। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि परमात्मा का क्या रोल है हमारे जीवन में। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आज व्यवहार कर रहा हूँ, या उसको परमात्मा कंट्रोल कर रहा है?
0: नहीं, दैट इज नॉट देयर।
1: दैट इज नॉट देयर। सो आई कैन नॉट से ही इज क्रिएटिंग द रोल फॉर मी। He can give me the wisdom and the power, लेकिन who creates my role?
0: I create
1: my role. तो अगर मैं एक दिन भी इस awareness के साथ चलूं कि scene after scene, I not only play the role, but I create the role.
0: I create the next situation, I create the, and I start acting it that way. I can act this way.
1: हाँ, see ना?
0: हाँ.
1: Fixed नहीं है. हर situation में, कोई भी परिस्थिति में, आज आपसे किसी ने बुरा भला कह दिया, वो एक सीन है. You can act this way. There will be at least five different ways जिसमें आप act कर सकते हैं. इसका मतलब, as an actor, आपका role fixed नहीं है. आपके पास choice है कि आप किस तरह से उसको enact करना चाहते हैं. आपकी script already
0: लिखी हुई नहीं है.
1: This is a very big thing. ये बहुत बड़ी realization हो जाती है. और उससे क्या होगा अगर हम उस अवेयरनेस से चलेंगे.
0: ओह, इट्स सो ब्यूटीफुल. ओनली द सिचुएशन कम्स. अगर आप थिएटर में भी है, अगर मैं प्ले कर रही हूँ और मेरे पास प्री जो रिटन डायलॉग्स नहीं है, इट्स ओनली द सिचुएशन, देन हाउ आई हैंडल इट, इट्स माय चॉइस.
1: तो कितना क्रिएटिव हो जाएगा ये सारा.
0: इट्स अमेजिंग.
1: फिक्स्ड नहीं है कि आपने लाइन्स पूरी याद की हुई है, आपको सिर्फ बोलना है. नहीं, उसमें कोई अवेयरनेस नहीं चाहिए. वो तो एक ऑटोमेटिक जो याद किया हुआ बोल रहे हैं. लेकिन एक है सिचुएशन आई, आपने परिस्थिति को परसीव किया, अपनी क्रिएटिविटी को यूज किया कि इस सिचुएशन में मुझे कैसा रोल प्ले करना है, और उसको प्ले किया. अब वही सिचुएशन में डिफरेंट एक्टर्स विल प्ले डिफरेंटली,
0: बट आई कैन देन टेक द प्ले इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन.
1: एब्सोल्युटली. एंड दैट इज व्हाई वी सेड यू क्रिएट योर डेस्टिनी. व्हेन वी सेइंग आप अपना भाग्य, अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स यू कैन टेक द प्ले
0: इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, इनटू अ डिफरेंट, ओह कंप्लीटली
1: डिफरेंट, बेस्ड ऑन हर सीन में आप क्या क्रिएटिविटी यूज करेंगे. अगर कोई अपनी क्रिएटिविटी को नहीं यूज कर रहा, तो दैट पर्सन इज वर्किंग इन अ वेरी ऑटोमेटेड मोड. वो आया, मैंने ऐसे बोल दिया, वो सीन आई, मैंने ऐसे कर दिया, उसने गुस्सा किया, मैंने कर दिया, उसने इंसल्ट की, मुझे बुरा फील हुआ. क्रिएटिविटी नहीं है, ऑटोमेटेड है. तो उसमें फिर जीवन कैसे हो जाएगी? इट बिकम्स बोरिंग. इट इज ऑटोमेटिक, अपने आप ही चल रहा है. मुझे कुछ बहुत ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिस दिन मैंने जीवन को इस तरह से देखना शुरू किया कि हर सीन में मेरा क्या रोल होने वाला है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, दैट्स टोटली माय चॉइस, माय होल वे ऑफ लुकिंग एट इट इज गोइंग टू चेंज.
0: इनफैक्ट इससे पता है क्या, एक बहुत बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारा जो माइंड है, जो अभी ऑलरेडी जो जो चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं, उन्हीं पे अपना टाइम वेस्ट करता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, उसकी बजाय विल बी नाउ वर्किंग कि मैं कैसे सिचुएशन
1: इन द प्रेजेंट.
0: यस.
1: इतनी सारी जो आज हम मैनेजमेंट वर्कशॉप सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, व्हाट इज इट अबाउट, प्रेजेंट में कैसे जीते, पास्ट और फ्यूचर को फिनिश करें. लेकिन प्रेजेंट में क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि प्रेजेंट में क्रिएटिविटी की जरूरत ही नहीं है. ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है. आप देखो, जब एक लेट्स से कि हम एक रास्ते पर जाते हैं घर से ऑफिस, अब घर से ऑफिस रोज जाते हैं, डू यू नो, आफ्टर सम टाइम आप पूरा रास्ता कवर कर सकते हैं बिना कोई अवेयरनेस के. बिना मतलब, आप बिल्कुल कुछ और सोचते, आपको पता ही नहीं चलेगा आप एक घंटे में ऑफिस पहुंच गए, राइट? लेकिन एक नए रास्ते पर जाना है तो आप कितनी अवेयरनेस से चलते हैं. अच्छा, अब यहां जाना है या यहां जाना है? यहां जाना है, फिर यहां टर्न करना. आप रास्ते में चीजों को देखेंगे. लेकिन जहां आप उसी पैटर्न पर रोज जा रहे हैं, doesn't require any awareness. That means आपने वो पूरा एक घंटा जर्नी की, लेकिन you were not present. आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे. इसी तरह आप जीवन की पूरी यात्रा में जर्नी कर रहे हैं. आप रास्तों पर जा रहे हैं, आप सीन्स में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन I am not there because I am not needed there. Because मैं अपना response choose ही नहीं कर रही. Fixed किए हुए responses. कोई गुस्सा करेगा तो मुझे गुस्सा करना ही है. तो उसमें क्रिएटिविटी की क्या जरूरत है अभी? तो विदाउट अवेयरनेस आई वॉज गोइंग थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ. कुछ और सोचते, तो इधर द पास्ट और द फ्यूचर, एंड उसमें प्रेजेंट वाला मिनट कब निकल गया पता ही नहीं चला. अब जैसे ये अटेंशन आ जाएगी कि हर मिनट एक नया सीन, नया रोल, एंड माई चॉइस हाउ टू प्ले, पर टाइम है पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना.
0: नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. देन यू नो लाइक अवेयरनेस में फिर हम एक्टिव रहेंगे. हम एक्चुअली यू नो ऑल हमारे सेंसेस जो हैं वो तैयार रहेंगे कि हाउ कैन वी इनोवेटिवली डू.
1: एब्सोल्युटली. तो फिर जो बात हो रही है बार बार हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. यू नो द क्वेश्चन इज कि हरेक को ये पता है कि पास्ट और फ्यूचर इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. लेकिन हाउ टू डू इट. क्यों हमारा मन बार बार पास्ट में जा रहा है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंट में करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं. अनलेस आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू. ऑफिस में देखो काम हम करते हैं. कई लोगों का काम होता है जो बहुत मोनोटोनस होता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत मोनोटोनस है. थोड़े समय के बाद करने के बाद आप वो काम करते जा सकते हैं विदाउट बीइंग देयर. आपका मन घर बैठ सकता है और आप अपना सारा यहाँ काम खत्म कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका कोई काम है विच रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस अवेयरनेस डिसीशन एक्यूरेसी फिर आपके पास टाइम नहीं है यहाँ और वहां की बातें सोचने के लिए क्योंकि मन फुल कॉन्सेंट्रेशन से उस मोमेंट के ऊपर है. नाउ लेट्स जस्ट लुक एट आवर लाइफ लाइक दैट कि एवरी मिनट अवेयरनेस हाउ टू चूज द रोल. जीवन कैसे हो जाएगी. एंड मेन चीज उसमें जो आएगी इट विल बिकम फन.
0: इट विल बी एक्साइटिंग.
1: इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ
0: फन. जो एक वो थकान से हम भर चुके होते हैं बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स टू डू. देयर इज नथिंग.
1: अगर आपको मोनोटोनस काम करना हो तो उसके एंड ऑफ द डे कैसे फील होगा.
0: वेरी टायर्ड.
1: लेकिन अगर क्रिएटिव काम करना हो यू एंजॉय. आप कितना भी काम कर सकते हैं सारा दिन एंड येट यू से मोर
0: आई कैन. ऊर्जा बची रहती है
1: क्योंकि क्रिएटिविटी इज द नेचर ऑफ द सोल. हर आत्मा का जो हमने देखा था पर्पज ऑफ लाइफ है इज टू एक्सप्रेस एंड एक्सपीरियंस. लेकिन वो कब होगा. व्हेन आई एम क्रिएटिव कि हर रोल मुझे कैसे प्ले करना है. तो अपने रोल्स को देखें. आज क्या हुआ हमने कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया. हमने ये सोचा आई हैव टू प्ले द रोल. टुमोरो पूरा दिन बिताएं आई हैव टू क्रिएट द रोल नॉट प्ले द रोल. प्ले द रोल ऐसे लगता है किसी और ने लिखा हुआ है. आई हैव टू प्ले. अगर हम इस कॉन्शियसनेस से चलते हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं मुझे तो सिर्फ रोल प्ले करना है तो मेरी दो चीजें बहुत लिमिट हो जाती हैं एंड वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी. मेरे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. सिचुएशन चाहे कैसे भी हो I am going to respond only in that very fixed, rigid way. And क्योंकि flexibility नहीं है creativity नहीं है मेरी अंदर की जो अनुभूति है जो experience है it's going to be very because stagnant हो जाएंगे. हम वही चीज you know same चीज रोज play कर रहे हैं. तो आप life को जो enjoy करना है इसीलिए आज किसी से बोलो कैसा है. चल रहे हैं हो रहा है. enjoyment वाली feeling excitement वाली feeling नो बिकॉज उनके लिए हर दिन वो सेम बन चुका है. सेम उसी तरह उठना उसी तरह बच्चों को उठाना उसी तरह ऑफिस जाना वापस आना. मोर और लेस एवरी डे इज बिकमिंग लाइक सिमिलर. फिर हम कहते हैं कुछ चेंज चाहिए. यू नो दैट इज व्हाई देयर इज दिस डीप डिजायर के कुछ चेंज चाहिए. चलो हॉलीडे पे जाके.
0: हाँ मैं वही कहने लगी थी कि स्ट्रेट हॉलीडे पे ले जाते हैं वहां पे भी बैठे रहते हैं या स्विमिंग पे चले जाते हैं जनरली अगर हम देखें.
1: तो चेंज की जरूरत क्यों पड़ रही है. क्योंकि यहाँ कोई भी चीज अगर हम बार बार करेंगे तो उसके बाद उसके अंदर कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता. सो वी लुकिंग फॉर अ चेंज. लेकिन इफ वी लुक फॉर दैट एक्साइटमेंट एवरी डे यू रियली वुडंट नीड अ सेपरेट हॉलीडे बिकॉज एवरी डे वुड बी एक्साइटिंग. हर रोज कुछ नया करना है. हम नया फिर से सिचुएशंस में ढूंढ रहे हैं. से हम नया कहाँ ढूंढ रहे हैं कि कहीं सिचुएशन चेंज हो तो कुछ नया हो. अब सिचुएशन हर टाइम नहीं चेंज हो सकती. आप कितनी बार ऑफिस से हॉलीडे पर जाएंगे. फाइनली आपको 365 डेज में से 11 महीने या 11.5 महीने तो ऑफिस में ही काम करना है ना. आप साल में 15-20 दिन ही हॉलीडे जा सकते हैं. डज दैट मीन कि नया विल बी जस्ट फॉर 15 डेज एंड द रेस्ट 11.5 मंथ्स द सेम बोरिंग वे. नो. व्हाई नॉट मेक एवरी डे एक्साइटिंग. एंड वो तब होगा कि सिचुएशन नई हो वो नहीं उसी सिचुएशन में मैं कोई नया रिस्पॉन्स क्रिएट करूं.
0: मैं नहीं हो जाऊं.
1: हाँ. क्रिएटिविटी हियर नॉट नेसेसरली क्रिएटिविटी इन इवेंट क्रिएटिविटी इन सिचुएशन क्रिएटिविटी इन रिस्पॉन्सेस. इज दैट पॉसिबल अ क्रिएटिविटी इन अ रिस्पॉन्स. कि वो ही सिचुएशन वो ही बॉस वो ही पेरेंट वो ही हस्बैंड but I will look at a different way of responding
0: and I suddenly become very nice.
1: Whatever you can
0: or otherwise nice se agar if I suddenly become very bad
1: creativity, but which will give you a feeling of
0: happiness,
1: satisfaction, happiness, contentment. अभी क्या हुआ, हम बहुत सारे roles play करते हैं, लेकिन majorly हमने दो roles में अपने आप को fix किया हुआ है. One is at work, one is at home. ये दो रोल्स हैं जिसमें हम एकदम से अपने आप को टाइट पकड़ लेते हैं, लेकिन हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं ढूंढते और हम बहुत सीरियसली उन रोल्स को प्ले करना शुरू कर देते हैं. दिस इज माय रोल, यू नो, एंड इस रोल को मैंने इस तरह से प्ले करना है. और जहां उस रोल में हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, वो मजा खत्म हो जाता है. दैट फन ऑफ प्लेइंग द गेम इज ओवर. जैसे जो आपने कहा पोजिशन, यू नो, आई एम अ मदर या आई एम अ मैनेजर, ये फिक्स्ड हो गई है. तो पोजिशन को ही रोल समझ लिया. अब क्या होगा, एक ऑफिस का लीडर है या मैनेजर है या चेयरमैन है, जो भी, इफ ही सेज आई एम द मैनेजर, दैट्स इट, देन वो अपने रोल को हर रोज किस तरह से प्ले करेंगे,
0: मैनेजर के रूप में या चेयरमैन के रूप में.
1: परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, एम्प्लॉयज कितना भी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हो, मैं तो बॉस हूं. तो अगर मैंने अपने आप को सिर्फ उसी पोजिशन में,
0: आई हैव टू क्रिएट दैट इमेज, यू नो, आई हैव टू कंटिन्यू टू मेंटेन दैट इमेज ऑफ बीइंग अ बॉस.
1: तो मैंने अपनी पोजिशन को सिर्फ अपना रोल बना लिया कि दिस इज माय रोल, आई हैव टू बी द बॉस. सामने आपके एम्प्लॉय बैठा है, वो उदास है, वो परेशान है किसी बात से, लेकिन मैं तो बॉस हूं. आई कैन नॉट सडनली बिकम वेरी फ्रेंडली विद हिम और समथिंग, बिकॉज हु एम आई, आई एम द बॉस. नाउ व्हाट इफ टुमारो द बॉस गोज टू द ऑफिस विद दिस अवेयरनेस कि यस, ये मेरी पोजीशन है, लेकिन ये मेरा रोल नहीं है. रोल कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस. मैं कभी बॉस का रोल प्ले करूं, लेकिन पोजीशन बॉस की है. कभी मैं एक मोटिवेटर का रोल प्ले करूं, कभी मैं काउंसलर का रोल प्ले करूं. कोई दर्द में है, कोई कंफ्यूजन में है, कोई दो लोगों की आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई है. कभी मैं एक मीडिएटर का रोल प्ले कर दूं उन दोनों के बीच में. कभी मैं इवन एक पेरेंट का रोल प्ले कर सकती हूं ऑफिस के अंदर. इज दैट पॉसिबल? बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन आई लुक एट द रोल विद क्रिएटिविटी. लेकिन अगर मैंने सोचा
0: ऑन द अदर हैंड आई हैव टू बी वेरी वेरी यू नो लाइक, क्योंकि मैं बहुत फियरफुल होता हूं, मुझे ये डर होता है कि एक बार मैंने गिव इन किया तो वो दिल स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, यू नो. मैं उनके साथ उस लेवल पर बात अगर करने लग गया तो फिर तो यू नो,
1: तो दैट इज द फियर. बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सपेरिमेंट. जस्ट ट्राई एंड इमेजिन कि अगर एक बॉस सिर्फ एक पोजिशन को नहीं स्टिक करके इस तरह से अलग अलग रोल्स प्ले करे तो वर्क एनवायरमेंट कैसा होगा?
0: वेरी स्मूथ एक्चुअली,
1: वेरी लाइट, वेरी लाइट, एंड जो आपस की सबकी बॉन्डिंग होगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी. सेम विद अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड. मैं फादर हूं, मैं मदर हूं सिर्फ नहीं, मैं एक फ्रेंड भी हो सकता हूं. अगेन अ पेरेंट कैन बी अ काउंसलर. हमें स्कूल में काउंसलर की क्यों जरूरत है? हमें स्कूल में, हाउ कैन वी नीड अ काउंसलर इन स्कूल? एक पेरेंट एक काउंसलर हो सकता है, एक पेरेंट एक फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट एक मोटिवेटर हो सकता है. लेकिन अगर वो सिर्फ पेरेंट है देन बहुत रिजिडिटी आ जाएगी.
0: इन फैक्ट पेरेंट एक टीचर हो सकते हैं,
1: पेरेंट एक टीचर हो सकते हैं.
0: अलॉट, यू नो, कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा हमसे नहीं पढ़ता है इसीलिए मुझे एक ट्यूटर चाहिए, कि मुझसे तो पढ़ेगा ही नहीं, मेरी तो बात ही नहीं सुनता वो. मतलब इट्स अमेजिंग.
1: एंड टीचर नॉट नेसेसरी ओनली इन सब्जेक्ट्स बट टीचर इन सो मेनी थिंग्स. आजकल हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि बच्चे यू नो इमोशनली थोड़े से वीक हो रहे हैं, वी नीड टू मेक देम स्ट्रॉन्गर. दिल से दैट इज द रोल ऑफ द टीचर, दैट्स द रोल ऑफ द स्कूल. वाई इज दैट नॉट माई रोल? हमने सोचा हमने तो उनको इतने अच्छे स्कूल में भेज दिया, बाकी सारा काम वहां होना चाहिए. तो कल अपनी पोजिशन से हटकर उसको एक रोल की तरह देखें. पोजीशन से अटैच हो जाते हैं कि मैं बॉस हूं और फिर मुझे बॉस ही बनकर रहना है. तो हम उससे हम भी सफोकेटेड हो जाते हैं. इफ यू सी सर्टेन पीपल एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, वो हंसेंगे भी नहीं खुल के, दे विल सिट सो अथॉरिटेटिवली क्योंकि दे वॉन्ट टू रिमेन इन दैट पोजिशन, क्योंकि उन्होंने सोचा यही पोजिशन और यही बना के रखना.
0: अच्छा, ये पर कई लेवल्स पर सिखाया भी जाता है, ट्रेनिंग का भी तो पार्ट है. समवेयर वी आर सो मच स्टक विद द ट्रेनिंग पार्ट कि हमें इसको मेंटेन करके रखना है, तो उसे अनडू करने की कितनी जरूरत है?
1: एवरीवन हैज टू आस्क देमसेल्फ्स, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग राइट फ्रॉम चाइल्डहुड ज्यादा इसी प्रकार की रही है, पोजिशन ओरिएंटेड. आपको ये बनना है, आपको ये बनना है. क्रिएटिविटी कभी उसका बहुत ज्यादा हिस्सा रही नहीं है. और इसीलिए हमने कहा कि हमें लोगों ने सिखाया क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, लेकिन क्या सोचना है वो कभी टॉपिक में था ही नहीं. आर्ट ऑफ थिंकिंग, वो नहीं था, तो जब आर्ट ऑफ थिंकिंग नहीं था तो आर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग नहीं
0: हो सकता,
1: नहीं होगा। वो एक सेट पैटर्न था कि आप मदर हैं तो ऐसी मदर होनी चाहिए, फादर हैं तो ऐसे, बट नो, इट्स द सेम थिंग, आई कैन जस्ट प्ले इट इन डिफरेंट वेज। एंड जितना हम उसको क्रिएटिवली प्ले करेंगे, हम उसको एंजॉय करेंगे, उस रिलेशनशिप को भी एंजॉय करेंगे। क्योंकि आज आप देखो, एक पेरेंट और चाइल्ड, एक चाइल्ड अपने पेरेंट के अंदर कन्फाइड क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर एक बच्चे की कोई भी इश्यू है, वो बाहर वालों को अगर बता सकता है, पेरेंट को क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि वो पेरेंट सिर्फ पेरेंट है। वो पेरेंट अगर फ्रेंड भी बन जाए तो एक बच्चे को बाहर किसी फ्रेंड को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
0: और पेरेंट को भी किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नो वॉट, समवेयर पेरेंट घर जब आ जाते हैं तब भी वो अपने दोस्तों से या मित्रों से उतनी फोन पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बच्चा मेरा दोस्त बन सकता है। यू नो, यू कैन एक्चुअली, बच्चा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है आपका। आई हैव एक्सपीरियंस इट कि वो आपको इतनी अच्छी सलाह दे सकता है जो कहीं बाहर का कोई मित्र नहीं दे सकता।
1: Now this is creativity. तो इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट करना है, नॉट नेसेसरी कि पहले हमने जो पढ़ा है वो गलत है या जो हम यहाँ अभी शेयर कर रहे हैं वो, नॉट नेसेसरी, उसको करके देखना है कि हाउ डू यू फील। लेकिन वो तभी होगा व्हेन वी आर वर्किंग विद द राइट कॉन्शियसनेस कि आई एम एन एक्टर, दिस इज जस्ट अ पोजिशन बट एक्चुअली इट्स अ रोल एंड आई एम प्लेइंग द रोल एंड आई एम नॉट प्लेइंग इट बट आई एम क्रिएटिंग द रोल। हर सीन में सिर्फ ये याद रखना है, How do I want to create my role in this scene? तो आपको कैसे भी scene मिले, कहीं बहुत उतार चढ़ाव की भी scene मिले, तो you still have a choice. It's again going back to that fundamental line, I have a choice. हर situation में I will choose how to play the role. So first thing that we have to try, position consciousness, नहीं, actor consciousness, कि मैं actor हूँ, I'm playing the role. दूसरी रीजन जो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं ये करते करते, इज बिकॉज हम रोल से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं
0: और रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं अपने, मेरा कर्तव्य है ये।
1: लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा आइडेंटिटी बन जाती है वो,
0: यही मैं हूँ,
1: यही मैं हूँ। तो यही मैं हूँ तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी की मार्जिन नहीं आती, क्योंकि हमने देखा कि अपना परिचय न होने के कारण हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जैसे ही हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम हर सीन में उसको वैसे ही प्ले करेंगे, क्योंकि यही मैं हूं, तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं होता। आई एम अ पेरेंट, इट्स नॉट आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ पेरेंट,
0: एक्चुअली डजंट कम, यस, यू नो, उस वक्त आपको वो छोड़ देता है थॉट कि आई एम अ सोल, यू नो,
1: व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट आई एम द सोल प्लेइंग दिस रोल, तो एक डिटैचमेंट आ जाएगी फर्स्ट, एंड डिटैच्ड होकर जो भी रोल प्ले करेंगे वो रोल पहले से भी
0: अच्छा
1: ज्यादा होगा। जब रोल में फिक्स होकर प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है। देखो, व्हेन आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द रोल, तो उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए, जितने फियर्स है मेरे मन में, उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए आई कैन बी अग्रेसिव, आई कैन बी डिफेंसिव। इफ लेट्स से माई आइडेंटिटी इज मैं बॉस हूं, अब आप मेरे से जरा हंस के बात करो थोड़ा सा, तो मुझे डर लगने लगेगा कि वो जो मेरा बॉस का इमेज है वो कहीं, यू नो, कहीं ये मुझे, जैसे आपने कहा, फॉर ग्रांटेड ना ले लें, तो फिर मैं तुरंत अग्रेसिव हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा आई हैव टू गिव यू द मैसेज, प्लीज रिमेम्बर, यस, प्लीज रिमेम्बर हु एम आई, आई एम द बॉस एंड यू बेटर टॉक टू मी जस्ट लाइक अ बॉस। सेम विद द पेरेंट एंड अ चाइल्ड, पेरेंट इमीडिएटली वो सिग्नल कन्वे करेगा बच्चे को, यू प्लीज रिमेम्बर I am the parent. That doesn't mean कि हम rudeness आने दें या you know misbehavior आने दें, लेकिन कोई हल्कापन, एक you know lightness relationship के अंदर, that's a part of the, you enjoy that relationship. लेकिन जहां हर relationship को उतना tightness से पकड़ा कि ये how could he talk to me like this? How could he behave with me like this? Because who am I? I am this. तो कहीं ना कहीं हमारा फिर जो बिहेवियर होता है वो अग्रेशन की तरफ या यू नो वो विड्रॉल की तरफ चला जाता है, जस्ट बिकॉज मैं इनसिक्योर हूँ अपनी वो आइडेंटिटी।
0: इनफैक्ट अगर हम देखें तो अगर क्रिएटिविटी है उस रिश्ते में, फन है, वी लुक फॉरवर्ड टू यू नो बींग
1: विद दोस पीपल, यस, एब्सोल्युटली।
0: आप उनसे कन्नी नहीं काट रहे होते बिल्कुल।
1: तो जो हमने पहले डिस्कस किया रिलेशनशिप्स में कि आज हम कट रहे हैं एक दूसरे से, हम कटेंगे नहीं जब हमें ये लगेगा कि एवरी रिलेशनशिप इज अ चांस फॉर मी टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ माई क्रिएटिविटी, इट विल बिकम अ लॉट ऑफ फन।
0: और जहां जहां थोड़ी मुश्किल भी है वहां पर, मतलब कहीं कुछ खटास या पहले से कुछ थोड़ा डिस्टेंस आया हुआ है, आई कैन ऑलवेज स्टार्ट डूइंग इट नाउ.
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि अब आपके पास चॉइस है कि वो रिश्ते में बहुत खटास है, लेकिन आप अपने रेगुलर जो मेथड ऑफ एक्टिंग है, प्लेइंग द रोल, उस पे नहीं जाओ. Make it creative. Create a beautiful new thought उस आत्मा के प्रति. Just go and enact it the way you never thought you could have done it. अभी मैंने सोचा कि वो मेरे से ठीक से नहीं बात कर रहे, तो मैं ठीक से क्यों बात करूं? Fixed way of acting the role. कल मैं सोचा, come on, forget all this.
0: Concentrate on your performance.
1: Let me go and play it in a way that even I will surprise myself. मैं आपको क्या सरप्राइज करूं, मैं तो खुद ही सरप्राइज हो जाऊं कि वो मैंने कैसे कर लिया ये. That is creativity.
0: And concentrate on your performance.
1: Only my performance. वैसे भी आपके performance पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती. मैं सिर्फ complain कर सकती हूँ या judgmental हो सकती हूँ. But if I just focus on mine, you see how much fun we are going to have in the whole day.
0: Oh, wonderful. Spirituality teaches you fun.
1: Yeah. Spirituality is a lot of fun.
0: Yes. That's what we are understanding. Thank you so much, Sister Shivani, aaj ki is puri baatcheet ke liye. Om Shanti.
1: Om Shanti.
0: Ab apne roles पर काम करना शुरू करें. आई थिंक इट विल बी रियल फन. और जो हमारे अंदर का एक्टर छुपा है, अपनी परफॉर्मेंस को, जैसे कि सिस्टर शिवानी ने एंड में आई थिंक यू गिवन द पंच लाइन, कि अपनी ही परफॉर्मेंस से अपने आप को चकित कर दें, एक नए अंदाज से खुद हम एक्ट करना शुरू करें, तो वो एक्टिंग जितनी नेचुरल होगी, जितनी हमारी अपनी होगी, उतना हम उसे एंजॉय करेंगे. अब एक विद ड्रामा कुमारी में हम हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे, ये प्रोग्राम आपका अपना है, ये मंच आपके लिए है. कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद दामा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट का ये पूरा सिलसिला आगे भी चलता रहेगा. आप हमारे साथ जुड़े रहिए. आज आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी
1: रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो। हाँ जी ए एम
1: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
2: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा निर्मल ऋषि जी की मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
1: हुण थोड़ी मोटी नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावनाओं को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुन रहे होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਸ਼ੂ ਬੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ 1674 AM ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ।

0: You are listening.
1: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
1: Radio Haji
0: Stay tuned.
3: मेरे शहर दी सब तो चंगी खुशबू तेरे कोलों संग गई नी तू मुर्दे जिंदा कर देंगी जे कबरां को

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो।

0: हाँ जी
1: हाँ वे सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
0: हाँ जी।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट choice.